0: जो भी पाओ
1: हाँ मैं देखता हूँ दादी माँ मेरे साथ आइए।
2: Ladies and gentlemen, ah, forget it.